0: मैं समझ गया जी, मेरा नाम राजू है। नमस्ते।
1: माफ कीजिए,
0: नमस्ते का जवाब इस तरह नहीं, इस तरह देते हैं जी।
2: पुलिस वाले की नमस्ते कब?
0: कमाल है, इस बात का तो फैसला हो चुका है जी। सरदार जी ने और उनकी बेटी ने मेरी गंगा जी की कसम का विश्वास भी कर लिया है जी।
3: भीमू, ओ भीमू, सुना?
4: हाँ भैया, पांडे आए, पांडे गंगा घाट से।
5: अच्छा, तब तो ये स्नान किए बिना भोजन नहीं करेंगे। ये लीजिए महाराज।
4: तो पांडे महाराज ये लीजिए।
6: ये भोजन भी लीजिए।
0: ठीक है, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ।

0: चिक चिक चक सच हुए सपने तेरे,
1: सच हुए सपने मेरे, झूम ले ओ मन मेरे, चिक चिक चाह चाह, चिक चिक चिक चा चा चा चाई एसेट्रा एसेट्रा आई कैन डू. आशा भोसले डज अ ग्रेट जॉब सिंगिंग फॉर वेदर रहमान, हु इज सिंगिंग टू देवानंद मूवी आफ्टर ही वॉज ही हैज रिनाउंस्ड टिकट स्कैल्पिंग. द नेक्स्ट सॉन्ग इज मोहम्मद रफी गीता द ड्यूएट, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात. दिस इज दिस सॉन्ग इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द मूवी बिकॉज ऑन देवानंद वहीदा रहमान द सॉन्ग प्लेज इन द बैकग्राउंड एज दे शेयर एन अम्ब्रेला वॉकिंग टुगेदर इन रेन. एंड ऑल ऑफ यू हु आर फेमिलियर विद बॉम्बे नो द बॉम्बे रेन्स. दे आर वॉकिंग टुगेदर इन रेन ऑन मरीन ड्राइव एज बोथ आर अनएबल टू हेल ए कैब इन द रेन. And then the song plays in the background. Rim Jim Ke Tarane Leke Aayi Barsaat. Here's the song.

रिमझिम के तराने लेके आए बरसात. द नेक्स्ट सॉन्ग इज द भजन काइंड ऑफ सॉन्ग. पिक्चर अचला सचदेव नंदा सिंगिंग दिस भजन एज देवानंद इज ब्रिंगिंग होम एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर देम यूजिंग हिज इल-गॉटन वेल्थ फ्रॉम टिकट स्कैल्पिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. ही फील्स वेरी रिमोर्सफुल एंड इवेंचुअली क्विट्स ब्लैक मार्केटिंग एट द अर्जिंग ऑफ of course his family and of course his love interest Vahida Rehman. The song Geeta Dutt Sudha Malhotra duet, again a rare combination, great rare combination. Na main dhan chahun na ratan chahun tere charno ki dhool mil jaye to matar jaun sham tar jaun he ram tar jaun. Here the bhajan.

0: कानों को बंद कर दिया।
1: दिल धड़क रहा है, जरा ठहर जाइए।
0: लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता।
1: मुझे भी जाने की जल्दी है अमर बाबू।